0: अधिक खुला खबर को साथ में हिमाल सुन चाँदी पसल उच्च क्वालिटी का आकर्षक गरगहना ग्यारेन्टी का साथ खरीद बिक्री असल तपाईंक सुख दुख को साथी हिमाल सुन चाँदी पसल वालिंग बजार स्याङ्जा।
1: रेडियो आदिखोला 105.4

0: गरम आलम परी
1: आकर्षक डिजाइन का गर गहना खरीद बिक्री करने ठाउँ
2: ठुलो हुनुहुन्छ रेडियो आदि खोला 105.4 आफ्नो ख्याल राख्नुहोस् है।

0: सुनिए ना, आइए हम लोग अनिमा एक बजे का छा
1: इस समय को साथ में जेतु सुनचादी पसल भूसाल पेट्रोल पंप नजिक रहेको डिपार्टमेंट स्टोर संग जोड़िएको पांच गरेता कुना को लाइन जैसी पंद्रह जाने बाटो तर्फ विश्वासिलो भरपर्दो र आकर्षक डिजाइन का गरगहना खरीद बिक्री करने
0: ठाउँ।